अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नू कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जाता औगणे आरा मनुख पशु है गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जाता अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता अवगुण मनुख दे गुणा नू कटदे ने दी हस्ती नू कटदे ते सतगुरु अवगुणा नू कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा है जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी पहला मरण कबूल जीवन की छड आस औगण मर जांदे नकारा मनुख मर जांदा एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा गुणा दा जन्म हुंदा दैवी गुणा नू लैके मनुख उपर नू उठदा गुरु नू प्यारा लगदा गुरु नू पाउंदा है संसार नू चंगा लगदा और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए सरदार हो गए मान वाले हो गए रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है तन तन गुरु नानक जन केरा जित मेरे आए चूके सब सोग संतापे जिंदगी विचो संताप निकल गए चैन आ गया सुख आ गया जीवन में कायर होंदे सां बहादुर बना दिता नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता आलसी होंदे सां उद्यमी बना दिता बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता परोपकारी बना दिता और जिसने अवगुण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है अमृत दियां दातां दे के नाम दियां दातां दे के बाणी दी सौगात बख्श के जीवन दा सुचज बख्शिया साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हों सदा घुमाया मैं वारने जावां उस सतगुरु तो तिस गुर को हों खनिए मैं टोटे टोटे हो जावां बलिहारने जावां उस तो जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया तिस गुर को हों वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने तिस सतगुर को वड पुन है उहदा कोट आन कोट धनवाद उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते जिन अवगुण कट गुणी समझाया सदा उस सतगुरु नू चेते रखना गुरसिख का फर्ज है ओदा परोपकार साडे सिर ते ओदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के अपने प्यार दी निशानी ला के अपना बना के अपना रूप दिता है अपना सुचज बख्शी है अपना प्यार बख्शी है
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

है, मगर पाईसा पाई गुरदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम। ते ए जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं, ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता, परदखणा लई पैरी पै के गले लगाया और उदे चरण तो के उसनू अपने सिंघासन ते बिठाया। ते सिंघासन ते बिठाण तो बाद उसनू बड़ा प्यार कीता, इतना प्यार कीता। ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे, सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है, इतनी उम्रा हो गई है, बड़ा चिर होया है मिलिया नू, कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना। गुरु दी सेवा दी

गुरु दा दस्या होया नाम याद आउंदा है, ते गुरु दा नाम याद आउन नाल जदों नाम दसम द्वार दे विच टिक जांदा है, एकागर चित मन हो जांदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे हन, कहंदे हन उस वक्त जितने भी पिछले माड़े कर्म हन वो सारे दे सारे कट्टे जांदे हन। भाई साहब फरमान कर रहे हन गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता, ते गुरबाणी विच भी स्वामी रामानंद जी महाराज दा एक शब्द है। ये स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब दे भी गुरु होए,

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैं ता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैं ता कालू नू वधाइया मिल रही हैं कि आज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन

आप एकांत विच एक ब्रिक दे तले बैठ के ते और जड़ियां गाइयां मजियां सन ओ एक खेत विच वड़ गईयां।

कोई ना ठंडी। उस चंद्रमा की रोशनी छावे भी बड़े लोग तपते सड़ते पै रहे। सर्दी की रुत बंदा कहे कि गर्मी जी है बड़ा परेशान करती है, सर्दी की रुत ठीक है। वो जे पहाड़ा से पर्वतों में रेंगे ने, बर्फा च रेंगे ने, कि वाकई बड़े सुखी ने। शायद साढ़े थोड़े हो सकता ज्यादा भी दुखी हो। बंदा तो दुखी है महाराज, कहने शीतल थी वह नानका जबल हरना, तेरी तपश का कारण यह है कि तू रब तो टुटा। महाराज कहने कारण की वरतिया, हो ही गलती तेरे को, बुरे काम को ऊठ खलोया। जिस वे उठना चाहिए सी उस वेले नाम की बेला पै पै सोया, उठे कमां नूं तां उठ के तुर पिया, चंगे कमां वेले सुता रहा। अवसर अपना बुझे ना आना, फिर सियाणा किस तरह कहिए, अनजान बड़ा मूर्ख कहना पेगा। माया मोह रंग लपटाना, लोभ लहर को बिग सुफूल बैठा। लोभ नूं लै के तां तुरे है, लालच नूं लै के तां तुरे है, पर जिथे आके सत्संगत का सवाल होया कहिंदा की लैणा है। ध्यान देना भगती दे मार्ग ते जेड़ा बंदा ये सोचे ना की लैना है, ओ नहीं तोरी नहीं सकदा, ओ इतरा एक कदम भी नहीं आ सकदा। इत्थे दा सवाल है की देना है, किन्नी कु खेचल करनी, किन्ना कु उद्दम करना है, किन्नी कु काल करनी, किन्ना कु बंधन च पैना है। जे बंधन च नहीं पै सकदा, मथा नहीं टेक सकदा, न्यो नहीं सकदा, बज के बैठ नहीं सकदा, गुरबाणी दा अध्ययन नहीं कर सकदा, गुरबाणी नु समझण दा तेरे कोल उत्तम नहीं है, ते फिर नहीं गल बननी। फिर ये भगती वाले पासे समझ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। ये तो औखे होने वाले काम है। अंतली तुक रहाओ दी तुक च, दूजी तुक च महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, तौ किछ पाईए जे होईए रेणा, जिस बुझाए तिस नाम लैणा। साहब दी रहमत होवे जिन्हां नूं नाम प्राप्त हुंदा है, पर उन्हां नूं प्राप्त हुंदा है जे कोई मिट्टी होना जानदा, जे कोई रेण होना जानदा। जे बंदा कहे बस बैठे बिठाया सुख आ जाए, कोई नहीं आना। जे बंदा कहे वो जी गल आप रोज नित पढ़ने हैं, ते बहाने बाजी में कई बार ये भी कह देने हैं, खाओ पियो मौजा करो। महाराज कहते ने हसंदे हैं, खेलते हैं, पहनते हैं, खवंदे हैं, विचे हो गए मुक्त। बहुत हुजत बाजा ने यह गल भी कही है, कहते जी महाराज कहते ने खाओ पियो हसो खेडो आपे मुक्ति हो जाए। लेकिन वो पहली तुक किन्ने पढ़नी, मूल किन्ने पढ़ना है। महाराज कहते ने नानक सतगुर भेजे हैं, गुरु नाल गल गुरु नाल सांझ होवे, ते नाले फिर गुरु दे अनुसारी होके पूरी होवे जुगत। ते हुण गुरु दे नाल सांझ पा के गुरु की गल सुन के पूरी जुगत की होवेगी। अमृत वेले जागना, इशनान करना, चौंकड़ा मार के नाम जपना, नितनेम करना, सत्संगत विच आउणा। जो भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरसिखी दियां निशानियां लिखियां, जो साहिबां ने साहिब गुरु रामदास साहब ने पावन बाणी गुरु

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सदके जदों तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मनिया जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो देना वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरुष तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह दा हुक्म है सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। ते ये हुक्म कलगीधर दा सुन के ते उहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसे देह दे अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया पे। ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करन वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकदा है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। ते जे गल्लां करनी है, जे बातां करनी है, जे दीदार करना है ते बह जाओ हजूरी विच, सज जाओ आके इशनान करके। जंदी है साहब दी बख्शिश है भी जदों गल्लां करोगे तुहाडी रसना ते आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊगी, ऐं कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर, ये उत्तम है, ये प्रमाणिक है, ये ना प्रमाणिक है, तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाऊ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए, जंदी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना देवे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है। ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है, ते राह दसेगा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है, आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का, आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुनदा नहीं ते मैं समझदा वी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते, पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा करन बख्शिया, पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है कि आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबिया तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चित दा करदा नहीं पर बद्धे रुद्धे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा, जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है, पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे ने। सो साहिब दी बख्शिश है, मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आजू ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा करिश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी भी हाज लईए ते जिहड़ी सानूं उत्थे काम आ सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

वाहिगुरु वो परमात्मा ते इतना शक्तिशाली है कि सारे संसार ते उदा हुकम चल रहा है। जदों उदा हुकम आ गया मैं उठ के तुर पैना है, जिन्ना चिर संजोग है उन्ना चिर मैं तेरे नाल हाँ। हुकम आया ते तुरना पैना है, रोज ही ए गल लै के बह जांदी है, रोज ही पुछदी है, पर जेड़ियां ए सच्चियां गल्लां इहदा पति इहनू दसदा है उन्हां नू ए मखौल करके समझदी है।

जो पति ने सचियां गल्लां कहियां, जो परम पिता परमात्मा दा हुक्म उनू जो ज्ञान विच आया होया सी रोज दसदा, पर ए सोचदी है तेरे नाल मखौल पिया करदा, एवें हासा करदा है, इन्हां सचियां गल्लां नू ओ हासा करके जानदी है। पर एक दिन उदों पता लगा

राजे ने सोचा मैनू नमस्कार करेगा, पर जदों ऋषि ने ना नमस्कार की क्योंकि उते समाधि विच बैठे हुए सन, गुस्सा आ गया। कहन लगे मेरे राज विच एक ए फकीर, मैनू इन्हें उठ के नमस्कार नहीं की, इनू मैं इस गल का मजा चखावांगा। कहिंदे ने एक मोया होया सप पिया सी, अपने धनुष नाल चुकिया ते वह मोया होया सप उस ऋषि दी गलदे आले दुआले लपेट दिता, उसी गर्दन विच पा दिता कि जदों इहदियां अखां खुलण गियां डरेगा। वापस आ गया अपने राजमहल विच। उधर ऋषि दे पुत्तर नूं जदों इस गल दा पता लगा कि राजा ने तेरे प्यो नाल मजाक कीती है, आया उहने आके अपने प्यो दे गल विचों उह सप लाया, नाल ही उहने श्राप दिता कि राजे नूं इतना माण अहंकार हो गया, अज तों सतवें दिन राजा सप दे डंगण नाल ही मरेगा, श्राप हो गया। इधर जदों राजमहल दे विच राजा आया, मुकुट ला के रखिया, एकदम बुद्धि फिर स्वच्छ निर्मल होई, पश्चाताप कीता कि ऐ राजन तू ते अज बहुत ही घोर पाप कर बैठे हैं, पर हुण की बनदा है। अखीर ए भी गल पता लगी कि सप दे डंगण नाल तेरी मृत्यु होनी है। कहिंदे ने साधु दा बचन कदे खाली नहीं जांदा। इने अपने राज पुरोहित सदे, बड़े बड़े ऋषि तपीश्वर सदे कि किवें इस मौत तो बचिया जाए, सप ना आवे। किसे ने कुछ दसिया, किसे ने कुछ दसिया, अखीर कुछ मंत्रियों की सलाह हुई कि सप नहीं आएगा, जे सप ना आया तो मौत नहीं हो सकती, पानी दे विच घर बनाया जाए, क्योंकि जहरीला नाग जिहड़ा है पानी दे विच नहीं जांदा, ते जे किधरे पानी चलिया भी जाए तो शीशे दे उत्ते सप नहीं तुर सकदा, इस करके शीशे दा एक महल बनाया जाए। राजा शीश महल दे विच बैठे, जदों उह समां लंघ जाएगा राजा बच जाएगा, इहदी मौत नहीं होवेगी। इसे तरह कीता गया, दरिया दे विच शीशे दा एक घर बनाया गया, राजा उहदे विच बैठिया अपना सिंघासन ला के। निर्धारित समय ते जदों उह समां पुज्जा आके चारे पासे पहरेदार लगा दिते, कोई भी परिंदा तक इत्थे ना आ सके। लेकिन की होया, रोज जिहड़ी मालण आउंदी सी फुल्लां दा हार लैके, गुलदस्ता लैके राजे नूं भेट करन वास्ते, उहनूं पता लगा ते इसे पासे आ गई। पहरेदारां ने सोचिया इह स्वागत विच लियाई है, रोज ही लियाउंदी है फुल ते गुलदस्ते, उहनूं जाण दित्ता। ए मालण जदों राजे दे कदमां विच इहने जाके फुल्लां दा गुलदस्ता भेट कीता, गल विच पाया ओ फुल्लां दा हार, बड़ी बेहतरीन खुशबू इस नूं आई, फुल्लां दा जिहड़ा गुलदस्ता सी हथ विच लै लिया। इसने कहण लगा मालण अज ते इहदे विच तूं बहुत ही खूबसूरत फुल गुंद के लियाई है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਿਛਕ ਨਾਗ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਡੰਗ ਉਸਨੇ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा, तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ कृपा करो सर्व

कबीर मानस जंदुर्लभ है, होतना बारंबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा।

तब एक मानस दे ही पाए, मानस जन्म अमूल पायो, वृथा काय गवाओ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एक मानस दे ही पाए। इस देह को सिमरे देव सदे पज हर की से, पजो गोविंद भूल मत जाओ।

जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पाई नहीं बाड़ी, पज लहरे मन सार पानी। अब ना पजस पजस कब पाई, आवे अंत ना पजया जाए। ए तेरे अवसर ए तेरी बार

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत फिरत बोते जुगहारे हो,

कई जन्म पैकेट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर्प होयो, कई जन्म पंखे सर्प होयो।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय का बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगती के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन। इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनू भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख। सुलही का हाथ

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु।

की पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानों कलयुग जीवां नूं उपदेश देंदे हुए यह गल समझांदे असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसी मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखिया? वो तो कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं है। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पटबाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरे पातशाह, मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा।

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नूं छड़ के बिख खाई जा रहा। हे परमात्मा, जो तू अमृत की दात दिती मैं वह भी हासिल नहीं की, केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता है? फिर कहिंदे ने माया मोह परम पै भुले, माया दे मोह विच पै के परमा विच मैं भुलिया फिरदा हां। माया मोह परम पै भुले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। सुत कहिंदे ने पुत्र, दारा कहिंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालक, मैं तेरे नालो प्रीत तोड़ के, तेरे नालो प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घर वालियां नाल लाया हुआ।

कंचन नारी में जियो लोभत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

सेवा ते सिमरन दो पंख हन, जिन्हां नूं ये दो पंख मिल जाण वह उड़ारी ला के किते भी जा सकदे, उच्च अवस्था ते पहुंचा जा सकता है। पर जब तक सेवा ते सिमरन ना होवे तद तक कुछ नहीं हो सकता, ना महरूप ना बंके नैना। हुण बंके नैना दा भाव की है? साहब कहिंदे ने हे मनुख इंसान, मैं तेनूं नैन दित्ते सन कि तू परमात्मा नूं वेखी, पर तू ते परतरिया रूप ते पराया धनी वेखी जाना। तेनूं मैं नेत्र किस लई दित्ते सन? दोए दोए लोचन पेखा हौं हर बिन अवर ना देख। नैन रहे रंग राई अब बेगल कहना जाए। ये नैन मिले सन परमात्मा नूं वेखण वास्ते, पर इन्हां नैना ने बुरियाई तकी है। जदों तकिया है बुरा तकिया है, इनी कोशिश की थी। ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम्हें जोत तारी, हार बिन अवर ना देख। तू वेख पर जिस वेले भी वेख हरी दा रूप वेख, ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग। हुण कुल कहिंदे ने जात नू, कुल किदी उच्ची है? ना कुल ढंग ना मीठे बैना। मैं हुने जिक्र कर रहा सा, कुल उची ओना दी जेड़े सिमरन कर दे, जेड़े बंदगी कर दे ने, जेड़े सेवा कर दे ने। ते हे परमात्मा मैनू ढंग भी चंगा ना मिले, क्योंकि कोई ना कोई ते ढंग होना चाहिए कि परमात्मा सानू आप बुलान लग पवे। ना मीठे बैना, हे परमात्मा मेरे बोल भी चंगे नहीं। जप जी साहब पढ़न वालिया नूं पता है, वो जानते ने कि गुरु पातशाह ने एक गल बड़े कमाल दी कही है। कहिंदे ने परमात्मा मोह के बोलन बोली है, जित सुन तरे प्यार। हे परमात्मा वो बोल केड़े ने? वो बोल मैनू भी दे, मैं ओही बोल बोलना चाहना जेड़े बोल सुन के तू साडे नाल प्यार करे। मैं पिछे जा जिक्र कीता सी कि बोल एक ऐसी चीज है, एक बोल बोलिया कईयां दा मन टुट जांदा है, एक बोल बोलिया कई गुरु नाल जुड़ जांदे ने। फिर इसलिए हे मनुख बोल ओ बोल जिदे नाल तेरा प्यार परमात्मा नाल जुड़े, बल्कि तू परमात्मा नाल टुट ना जाए। मोह के बोलन बोली, आपा कदी पुछ कीती है बोल केड़े ने? जेड़े बोल सुन के परमात्मा साडे नाल प्यार करन लग पवे। इसलिए सतगुरु कहिंदे ने असी चंगे नहीं, क्योंकि कोई भी काम असी मालक दी मर्जी नाल नहीं करदे। असी जो कुछ करने अपनी मर्जी नाल ही करी जाने, जो साडे मन च आउंदा असी करी जा रहे हैं। कदी परमात्मा नूं असी नहीं पुछिया, हे परमात्मा तेनूं चंगा की लगदा? जिवे तू कवे मैं उवे बोला, जिवे तू रखे मैं उवे रवां, जिवे तू चलावे मैं उवे चलना, जिवे तू आखे मैं उवे करां। फिर तुसीं कह सकने आ कि परमात्मा साडे ते मेहरबान है। पर जे परमात्मा दी गल ही नहीं मननी ते परमात्मा खुश किवें होवेगा? आओ आपां ख्याल कर रहे हां असीं चंगे क्यों नहीं, क्योंकि जिस वेले मनुख इस ख्याल ते पहुंच जांदा है उहनूं कुछ ना कुछ मिलदा है। ते जदों उह इस अवस्था ते होवे कि मेरे नालों चंगा किहड़ा हो सकदा है, ते फिर भाई गल नहीं बनदी। मैनूं ख्याल चेते आया तुहाडी झोली पावां। कहिंदे ने एक दफा एक बजुर्ग एक नगर दे बाहर दी लंघ रहा सी, ते पिछो आवाज पई। आवाज मारन वाला एक नौजवान सी। उसने आवाज मार के आखिया, ओ बाबा जरा रुक। बाबा जी रुक गए। जिस वेले वो बाबा जी रुक गए कोल आया, ते बाबा जी ने बड़े प्यार नाल बोल के आखिया, हां भाई दस तू मैनू रुकाया है, ते आवाज मारी है, की काम है? कह लगा, बाबा मैनू ए दस ए जिहड़ा नगर है एदे विच रहण वाले लोग किहो जाए ने, किहो जाए ने लोग? कहिंदा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, सत्संग तो ध्यान देना। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे हां, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले हैं। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू जिहड़ा साडे अवगणां दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा। आओगे ख्याल करिए क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे माधो असी के हो जाए ते आप के हो जाए। कहो कबीर मेरी माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नाही दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं मेरे वर्गा पापी कोई नहीं ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैणे ने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे अपराधी, गोबिंद हम ऐसे

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने है, दिन चढ़दे उठ के कमा कारण तुर पैने है, ते परमात्मा दा नाम कदों जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा होया।

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जे अपराधियां, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणां दा जिक्र कीता है। कहंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

आंख सुनाए पूछे आलाहे विश्वास। अकिरत कण दी तस्वीर की है, मद विच रिद्दा पाए के कुत्ते दा मास। कहिंदे ने कुत्ते दा मास, मद कहिंदे ने शराब विच रिने, तरिया मानस कोपरी मनुख दी कोपरी विच उसनू रिने। तिस मंदी वास रत्तू परिया कपड़ा लहू दा पड़िया, लाल रंग दा कपड़ा। इस नाल इसनू ढक के कहिंदे ने एक बीबी ले जा रही है, ताकल चली चूड़ी कल भोग बिलास। आख सुनाए पुछिया लाहे विश्वास, किसी ने जांदियां पुछ कर ली बीबी कुत्ते दा मास। शराब दे विच रिन्या मनुख दी कोपरी विच बनिया होया, इनू तू ढक के क्यों ले जा रही है, इनू किसे वेखना है। कहिंदे ने बीबी ने जवाब बड़े कमाल दा दिता, कहन लगी वीरा सुन, नदरी पवे अकिरत कन मत होए विनाश। मैं टक के वीरा इसलिए ले जा रही हां किते अकिरत कण दी नदर ना पै जाए। अकिरत कण दी नदर पै गई, ए भी भोजन व्यर्था चला जाएगा। सो अकिरत कण दी नदर भी इन्नी भैड़ी हुंदी है, कदी पत्थर ते भी पा देवे ना ओनू भी दुफाड़ करके रख देंदी है। मैं ते समझना अकिरत कण दी नदर तो भी बच के रहना चाहिए है। बचो अड विश्वास घातियां कोलों, अकिरत कणा कोलों, जेड़े किसे दा मनुख दा कीता नहीं जानदे उना मालक दा कीता की जानना। अरदास करिए विश्वास घाती अकिरत कण मैं कोई ना रखंदा, पाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने।

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है? ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदे हन घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई? ओ जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।